0: அப்பே என்ன பாடே சொல்ட்டி வாஸ்கோ டிவி போக்குற இடியோ நீக்கே அவதாரமா சாவுத்த
1: கட்டை பரி லைலை வாஸ்கோ டிவி போக்குனோ நீ பிட்டி ஆஸ்னே டிவி பிப்பியோ அனி பனவுன ஜனல் லாகே கொண்டி பனவுனே புக்கா உலாட்ட ஓயினே
0: চিন্তা করন পর্ষত সদর মুকাম চরিকোট বাট চরি ঘ্যাং জানে বাট মা রয়কো আমরাই চৌধুরী ইলেকট্রনিক্স মা লই যাও না তাহা তো তিম্র বিগ্রে কো টিভি মাত্র হয় না কি মোবাইল ঘড়ি সবাই পনে আসনে সকি গনে
1: এ ওরে तिसु भए म पनि टेटेतिर लागिहाल्छु नि होइन त
2: अब आउनुहोस् हाम्रै चौधरी इलेक्ट्रोनिक्समा 32 इन्चदेखि माथिको एलईडी किन्दा डिस्काउन्ट सितैमा यहाँ फ्रिज डी फ्रिज एलईडी एलसीडी टिभी मोबाइल साउन्ड सिस्टम सुपथ मूल्यमा पाउनुका साथै सबै प्रकारका टिभी मोबाइल र अन्य इलेक्ट्रोनिक सामानहरू मर्मत गरिन्छ यसका साथै विवाह गोष्ठी सेमिनार व्रत बन्ध र अन्य कार्यक्रमका लागि साउन्ड सिस्टम भाडामा पनि पाइन्छ टिभी मोबाइल र अन्य इलेक्ट्रोनिक सामान मर्मत गर्ने ट्रेनिङको पनि सुविधा यसमा विशेष गरी पाँच जनाको समूह बनाएर आएमा एकजनालाई छुटको पनि व्यवस्था गरिएको छ
3: प्रोप्राइटर नरेन्द्र चौधरी इलेक्ट्रोनिक्स चरीकोट चरीख्याङ थप जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9844391042 र 9844061814
4: सुन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो रेडियो 103.4 मेगाहर्ट्ज।

एक नंबर को पाता दुई नंबर बसिका तीन नंबर मागते के लाई तिम्रो हाम्रो बेलाई तिन नम्बरमा गाँसे